अभी एलिजाबेथ बी था एलिजाबेथ बे थाई कलो रीति हाय नगी कुमारी एलिजाबेथ मुसिको तो मकिरा गाओ डामिन गुंटिंग कब सरांगान तो तुंग डीजे का कब सरांगान नगी कुमारी अतबनाय डामिन अभी नूरिया मदिसिन पोसिको नगी अभी पीटर मेलबोर्न कब सरांगान डीजे तो सो काओ हाओ हाय हाय कुमारी कयो हिना मेलबोर्न कब सरांगान नगी angatan ga tambalut makirong da tina makirong tika selimbahan berus tusun